0: 105 FM 93.7 लखाना रेडियो ITN
1: ओए वाय सट गया थाव सट गेदर की वाट आव सट गेदर याने के तमाई अमारुम वेडी
2: सलन ललन दलुव विलस नितंब न लोला
3: ये दाल में दाल याना तेरी नपति ना इवे

0: फी मनु तुनाई दशमा पहा अनु तुनाई दशमा हाता लखांडे रेडियो आईटीएन सेबे श्रीलंकिया हांडे
1: विलाव पासरो देखाई
2: विलाव ओपवेते किन्हा आवे
3: वार्ता पिट वार्ता तबने कोट याते एनएलबी दाना निधाने लुटराईये राते संवर्धने तब तैनंत शक्तियक्वेमिंग ओबाद दिनवार रटा दिनवटे दाना निधाने बिलदीगे ओबाद कोटी बजे कुवान

कथन लसन है मधुरम गायन आगल मट अड़पाड़ पेन नदी तर मैं भाई फर्स्ट वर्स अरे मेजर कॉर्डर इतना पड़ी स्लाइटली पड़ी औट पिचना एरी वाला लसन इतना परफेक्ट गायन है बाकी वेरिएशन सर की वागे

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहाता लखांडे रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकिया हांडे
1: बिलाव पसरु हतराई
2: बिलाव ओपवेत किन आवे
3: वार्ता पिट वार्ता तबने कोटि अटे एनएलबी तनडे तहने लुतराईन प्रति संवर्धनेत तनंत शक्तियक पेमिन ओबत दिनवा रटत दिनवत तननिधाने बिलदीगेन ओबत कोटिपतिय कुवन